कंगना खना कुठे झूमे रे झुमके चले जो इतलाती राह में मार के तू ठुमके है। कंगना खना कुठे झूमे रे झुमके चले जो इतलाती राह में मार के तू ठुमके। काम की बात कहूँ तू सुन ले, एक अच्छा सा साथी चुन ले, दुश्मन रूप के हंस